पौड़ी जिससे वैस पाई अस साहिब सदा संभाली है, जिद किता पाई अपना सकाल ब्रीक उकाली है, मंदा मूल ना कीची दे लम्मी नदर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते वेह पासा ढाली है, पिछला है उपर काली है, पिछला है उपर काली है।

साहेब सेती हुक्म ना चला कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफ बिगाड़।

हर नावै की वड़ियाई कर्म प्राप्त होवै। गुरमुख विरलै किन्नै त्याया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। सतगुर की प्रतीत ना आई आ, शब्द ना लागो पाओ। ओस नो सुख ना उपजै, पावै सौ

नानक दे कर हथ निमाणियों के मान नेताणियों के तान नेओटियों की ओट न्यासरियों के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास जियो महाराज।

मुखी उजले कितनी छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मसकत काल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आनंद गुणी निधान ने माण्यो के मान ने ताण्यो के ताण ने ओटे हो की ओट।

0: सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज वास गोविंद दास तुहार।
1: सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार,

सतिया मन संतोख उपजै, दिन कै विचार दे दे मंगै सैसा गुणा सोकरे संसार, चोरां जारां तै कुड़ियारां खारां बावे कार, इक होदा खाए चलै।

0: जी हाँ विक है ती हाँ विक महला दूजा
1: हाँ मैं हाँ जात है हाँ मैं कर्म कुमाए हाँ मैं बंदना फिर फिर जो नहीं पाए हाँ मैं किथों उपजे कर संज में जाए हाँ मैं हो हुक्म है पया कृत फिर आए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जी अपनी त गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जलो इत संजम दुख जाए पौड़ी।

हचता पर जानिया जा रे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सचता पर जानिया जा सच तरे प्यार ना हो सुन मरे सियता पाए मुख द्वार सचता पर जानिया जा जुगत जाने जियो तरतकाया साध के विच देख करता भी हो सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की कुछ पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे धोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पुड़ दान भिंडा तरी।

जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सनाओ सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गोर पर समरार दृष्ट धरत तम हरण दहने अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरह गुर जगत।

0: सदा कल्लिव रहे करम स्विचाचार दुरम स्पूर जो निवे खवे कस विमल विचार यह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो किरन मत कर बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख समारयो हर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लेने पयो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विकास जाग्यो लख कलतरी जुगंतर सतगुरु सहज समान रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरण पिखंते कल मल तरसन सदरंग सहज कल उचर जस जंप लहन रसन नाम औखद नाम आधार अर नाम समार सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम स्वर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट रवलोए दर्शन परसे गुरु कै अठ सठ मज्जन होए दर्शन परसे गुरु कै अठ सठ मज्जन होए
1: सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ साच सदा सत पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सत नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु कै साजन परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु कै साजन परवान
2: अमै दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसा।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। कन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावे। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर का।

0: चित चितो अरदास कहो पर कह बिन सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत तो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जेव तू रखे है तेव रहो गुर ज्ञान अर ध्यान तत् सो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत ना तावे निरंकार के बसे देश हुक्म बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो अगम अनंत अनाद आद जिसको न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन करन समर्थ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसे सिरे सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चेतै बसै
1: तै पढ़ियो एक मन तरियो एक कर एक पछाणियो नैन बैन मोहे एक एक दोए थाए न जानियो सुपन एक परतख एक एक समहलीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे राख लखो अलख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पणै तू एक लोड़ै एक मनियो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्माणी जे मत त्रिलोचन चित भगत।

निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त। सच नाम करतारे सोदर नानक संग रहो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरण दिव रहो तित कुल

मानस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख होए सिफ तख संबंधी, नूर अरसह कुरसह, तुद डिठे सच्चे पात मल जन। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही सब नांद। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही सब नांद वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पहला, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। काट काट राव रहया बनवारी, जल थल महियल गुपतो वरत, गुर शब्दी देख निहारी जियो। रहाओ मारत पयाल आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा धारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, काट पीतर देख मुरारी जियो। जन्म मरण को एहो जग बपड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो। सत गुर मिले ता गुरमत पाई, साकत बाजी हारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ना गर्भ मझारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासे,
ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। ओड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का मैल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी। तादरगे पैंदा जाए सी तादरगे पैंदा जाए सी।